अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

पार्वती पतये हा।

श्री गोविंद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान सृष्टि की तुलना उधर्वमुखी जड़ एवं अधोमुखी शाखाओं वाले एक पीपल वृक्ष से करते हैं एवं इसमें बंधे हुए मनुष्य को अनासक्ति रूपी हथियार द्वारा मुक्त होने को कहते हैं।

श्री भगवान अपने परम धाम के बारे में बतलाते हैं। वह कहते हैं कि जीव लोक के सभी प्राणी मेरे ही अंश हैं, जो कि मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्षरत हैं।

प्रभु कहते हैं कि इस जग में क्षर व अक्षर दो भांति के प्राणी होते हैं, परंतु एक अन्य उत्तम पुरुष जो क्षर अक्षर से परे है वह परमात्मा है और वेदों तथा जग में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं ही पुरुषोत्तम हैं।

0: भारत देश में नदियों की संपत्ति अपार है। उत्तर भारत में सिंधु की सहायक नदियों के अलावा गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, मध्य भारत में नर्मदा और ताप्ती, पूरब में महानदी, दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी और देश की अन्य अनेक नदियां अपनी जीवन जलधाराओं से मानव कल्याण तथा संस्कृति के विकास में योगदान करती हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए कृष्णा वेणी जैसी आराध्य देवी बन गई है। कृष्णा नदी के जन्म के बारे में हमारे पुराणों में वृत्तांत मिलते हैं। एक इस प्रकार है।
1: चतुर्मुख ब्रह्मा ने कहा कि कलयुग के आरंभ के लिए सृष्टि का निर्माण करने का समय जब निकट आ गया, तब महाविष्णु ने पापों के परिहार के लिए तीर्थों के निर्माण की आज्ञा दी। हमने अपनी सम्मति दे दी। महाविष्णु ने अपने भक्त सह्य मुनि से सह्य पर्वत के रूप में अवतार लेने को कहा और वर दिया कि विष्णु अंश रूपी कृष्णा उसके तन पर से सदा सर्वदा बहती रहेगी।
0: इस तरह कृष्णा नदी ने महाविष्णु के अंश के रूप में जन्म लिया।
1: महेश के अंश के रूप में वेणिया या वेणी नदी का प्रादुर्भाव हुआ। कृष्णा और वेणी नदियों ने मिलकर कृष्णा वेणी का रूप धारण कर लिया।
0: पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि कृष्णा वेणी केशव और शिव का समागत स्वरूप है।
1: कहते हैं हिमालय से भी पुराना है दक्कन का पठार। इसके पश्चिमी कछार में स्थित घाटियों के महाबलेश्वर में गोमुख क्षेत्र है। वहीं गोमुख से कृष्णा नदी निकलती है।
2: परिहार

0: स्थित दक्कन कॉलेज के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर एमएस राजगुरु की मान्यता है।
1: नाउ द प्रेजेंट कृष्णा एज यू सी टुडे इट कुड बी एज ओल्ड एज 1 मिलियन ईयर्स ओल्ड।
2: आज जिस कृष्णा नदी को आप देखते हैं वो 10 लाख वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। अनुमान है कि कृष्णा नदी के कछारों पर आज के मानव का पत्थर युग के मानव के रूप में पहले पहल करीब 30,000 साल पहले आविर्भाव हुआ था। आप शायद इस तथ्य से अवगत होंगे, जब डोम नामक स्थान पर बांध का निर्माण हो रहा था तब खुदाई में पत्थर युग के अनेक औजार मिले थे।
0: महाबलेश्वर के पर्वत पाद में स्थित वाई गांव से होकर कृष्णा नदी बहती है। ये गांव पहले जैन धर्मावलंबियों का केंद्र था। इसके बाद वहां वेदाध्ययन केंद्र भी बना। मराठी विद्वान श्री तारक तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने वाई के बारे में इस प्रकार विवरण दिया है।
3: देयर आर 7 घाट्स एंड देयर आर वेरी फाइन टेंपल्स।
4: वाई में 7 घाट हैं। यहां कृष्णा नदी के तट पर बहुत सुंदर देवालय हैं। इसीलिए ये गांव लोगों को आज ही नहीं सदियों से आकर्षित करता आ रहा है।
3: थ्रूआउट द इयर्स सेंचुरीज
0: वाई पहुंचते ही आपको ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ 384 देवालय हैं और 7 जगहों पर स्नान करने के लिए घाट हैं। कृष्णा नदी के तट पर स्थित पवित्र स्थलों में वाई गांव को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। वाई ग्रामवासी लेखक श्री रविंद्र भट्ट ने बताया।
5: आमच्या वाईची कृष्णाबाई ही नुसत्या वाईचीच नाही तर साऱ्या परिसराचीच लोकमाता।
4: कृष्णा नदी केवल हमारी ही नहीं बल्कि सबकी लोक माता है। शिवाजी ने सुल्तान अफजल खां पर चढ़ाई करते समय कृष्णा नदी की पूजा कर विजय प्राप्त की। तब से कुल धर्म तथा जाति भेद के बिना सभी लोग माघ मास में 5 दिन उत्सव मनाते आ रहे हैं।
5: वाचवाव म्हणून अतिशय कारुण्याने
0: कृष्णा और वेणी मिलकर अविरल जल प्रवाह बन कृष्णा वेणी के रूप में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कोयना, यारला, वरुणा, दूध गंगा आदि उपनदियां इसमें मिलती गईं। पश्चिम की घाटियों में पश्चिम की ओर बहने वाली और अरब सागर में मिलने वाली नदियों की लंबाई बहुत कम है, लेकिन ये नदियां जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी रही हैं। इसके विपरीत कृष्णा नदी 1500 मीटर की ऊंचाई पर जन्म लेकर पूरब की ओर बहती हुई 1200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है और फिर कृष्णा जिले की सुदूर सीमा में इसका सागर से संगम होता है।

0: इस नदी का प्रवाह प्रांत लगभग 2,59,000 वर्ग किलोमीटर है।
1: इसकी सहायक कोयना नदी पर बनाया गया जल विद्युत केंद्र 860 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है।
0: कृष्णा नदी सतारा से होकर सांगली तथा कुरंदवाड़ा को पार कर बीजापुर में प्रवेश करती है।
1: कर्नाटक में कदम रखते ही कृष्णावेणी 3 मील के फासले में 408 फुट नीचे की ओर उतरती है, जैसे उछलती कूदती अपने उत्साह को प्रकट करती हो।
0: नीचे उतरते समय होने वाली ध्वनि 30 मील दूर तक सुनाई देती है। ये नदी जिन जिन इलाकों से होकर बहती है उनमें कई ऐतिहासिक महत्व रखते हैं।
1: इनमें मुदगल, बादामी, ऐहोली, पट्टडकल और अन्य अनेक स्थल सुप्रसिद्ध हैं।
0: कर्नाटक में मलप्रहारिणी या मलप्रभा और घटप्रभा नदियां कृष्णा में मिलती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन पर बांधों का निर्माण हुआ। इसी क्षेत्र में वीर शैव धर्म प्रवर्तक श्री बसवेश्वर का प्रादुर्भाव हुआ। भक्तों का कहना है कि उन्होंने सदैव कूडली संगमेवर की पूजा की तथा 4 लाख स्वरचित भक्ति गीतों का गान किया, जिन्हें बसव वचन के नाम से पुकारते हैं। इन भक्ति गीतों ने कन्नड़ भाषा को परिपुष्ट किया, अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीति का भी विरोध किया उस महान विभूति बसवेश्वर ने। कृष्णा नदी पर ऊपरी कृष्णा बांध का निर्माण किया गया है। ये कर्नाटक में एक बड़ा बांध है। इस प्रोजेक्ट में आलमट्टी और सिद्धापुर नामक 2 बांध हैं। इन बांधों के जरिए लाखों एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए पानी प्राप्त होता है। इससे लोगों का जीवन विधान ही जैसे बदल जाता है। दूध के उफान की तरह श्रू और संपत्ति घर घर में उफनती हैं और फसलें जैसे सोना देती हैं।
2: पश्चिम घाटियों में छत्रपति शिवाजी के द्वारा बनाए गए कई गिरी दुर्गों के पार्श्व के झरनों को मिलाती भीमा नदी आगे बढ़ती है।
1: पंडरीपुर विट्ठल देव के पैरों को जैसे भीमा नदी छूती है।
2: नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम, गोरा, कुंवर, सबकुबाई और कई भक्तों ने विट्ठल देव की पूजा की। भीमा नदी और इनके बीच अटूट

0: रायपुर क्षेत्र में भीमा नदी का मिलन कृष्णा नदी में हुआ है।
1: और एक महान सहायक नदी है तुंगभद्रा। वराह पर्वत श्रेणी में गंगमूल के पास तुंगा नदी का जन्म हुआ। भद्रा नदी का भी जन्म इसी क्षेत्र में हुआ। इन दोनों का मिलन ही तुंगभद्रा माना जाता है। आदिशंकर का शारदा पीठ यही है।

0: हॉस्पिटल के पास तुंगभद्रा बांध का निर्माण हुआ। इससे सिंचाई के लिए पानी मिलता है, जिससे इस क्षेत्र में खेती की उन्नति हुई है। तुंगभद्रा बांध से बिजली भी तैयार की जाती है। दक्षिण भारत के इतिहास में सभी क्षेत्रों में प्रगति प्राप्त हम्पी विजयनगर का स्पर्श करती हुई तुंगभद्रा आगे बढ़ती है। तुंगभद्रा ने कवि, पंडित, गायक, किसान तथा मजदूरों से सम्मान प्राप्त किया। इस नदी के लिए कहावत प्रचलित है, तान के लिए तुंगा, स्नान के लिए गंगा। आंध्र प्रदेश में कृष्णावेणी और तुंगभद्रा का मिलन होता है। कृष्णा नदी को श्री शैलम क्षेत्र में पाताल गंगा के नाम से पुकारते हैं। यहाँ जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है। रॉयल सीमा के कुछ क्षेत्र को खेती के लिए पानी तथा मद्रास नगर के निवासियों को पीने का पानी देने के लिए तेलुगु गंगा बांध का निर्माण हो रहा है। श्री शैलम शैव क्षेत्र माना जाता है। यहाँ भ्रमरांबा का शक्तिपीठ तथा मल्लिकार्जुन के ज्योतिर्लिंग है। वाराणसी की तरह यहाँ भी शिवलिंग को छूकर सब लोग जी भरकर पूजा कर सकते हैं। सूर्य शशांक वन्नी नयनम। इक्ष्वाकुल के समय का विजयपुरी इसी कृष्णा नदी के निकट स्थित है। लगभग 2000 वर्ष पहले आचार्य नागार्जुन ने महायान बौद्ध धर्म का प्रचार किया था इस क्षेत्र में। अब यहाँ कृष्णा नदी पर बनाया हुआ नागार्जुन सागर बांध स्थित है। सागर के एक टूरिस्ट गाइड श्री बी वीरेंद्र इस बांध के बारे में यूं बता रहे हैं।
1: दीनी पंडित जवाहरलाल नेहरू गारु 10 दिसंबर 1955 ఈ శంకుస్థాపన చేయడం ద్వారా మొదలైనప్పటికీ అయితే నిర్మాణం మొదలు చేసి
2: స్వర్గీయ పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ 10 దిసంబర్ 1955 కు ఇస్ బ్యాంక్ కా శిలాన్యాస్ కియా థా किंतु वास्तविक रूप में इसके कार्य की शुरुआत सन 1957 में हुई और सन 1969 में ये योजना पूरी हुई, जिन्हें हम जवाहर केनाल तथा लाल बहादुर केनाल कहते हैं। इन दोनों नहरों का उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 4 अगस्त 1967 को किया। जवाहर नहर की लंबाई 126 मील है। इसके द्वारा 12.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। इससे अनाज तथा कई प्रकार की दलहन की पैदावार में हुई है। बाई नहर तेलंगाना की ओर 111 मील लंबाई में खोदी गई। इससे कृष्णा जिले को भी सिंचाई के लिए पानी मिलता है।
0: इक्ष्वाकुओं का विजयपुरी शहर डूब गया। यहाँ से खोदकर निकाले गए शिल्पों, आरामों, स्तूपों तथा चैत्यों के अवशेष को रखा गया है नागार्जुन सागर के बीच पहाड़ पर स्थित म्यूजियम में। हमारे देश में जलाशय के बीच में स्थित ये अकेला म्यूजियम है।
3: दुनिया में पत्थरों से निर्माण किए गए बांधों में काले पत्थरों से निर्माण किया गया नागार्जुन सागर का ये बांध सबसे बड़ा है।
4: इतिहास प्रसिद्ध पलनाडु कृष्णा नदी के नजदीक है।
3: यहाँ के शासक ब्रह्म नायडू की शासन व्यवस्था बहुत लोकप्रिय थी। उनकी लोकप्रियता लोक जीवन का स्वर बनकर आज भी गूंजती है।

ब्रह्म नायडू अपना शासन संचालन इस प्रकार करते थे कि उनके राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रह गया था। उन्होंने सभी धर्मों को आदर दिया, मानव मात्र में समानता की भावना फैलाई और सब में एकता की भावना फैली। उन्होंने सहभोज की परंपरा चलाई। इतना ही नहीं बल्कि ब्रह्म नायडू ने हरिजन कुलोत्पन्न कन्नमदास को अपना सेनापति बनाया था। मानव समानता के ऐसे नियामक ब्रह्म नायडू

0: छोटे छोटे पत्थर फुटकर भगवान है, नागलेट का पानी पारस का पत्थर है, बाजरा है, ज्वार का भात है, सर्प और बिच्छू है, पलनाटी सीमा के गांव ऐसे हैं।
1: आज इस क्षेत्र में मिलने वाले पत्थरों का उपयोग करके सीमेंट बनाया जाता है, ईख का उत्पादन करके शक्कर बनाया जा रहा है।
2: हैदराबाद क्षेत्र से मुसी नदी मत सामंजस्य की भावना प्रवाहित करते हुए कृष्णा नदी में मिलती है।
3: मुसी का आना पूरी हो मेरी कामना, ये कहावत शायद सच हो गई।
1: वेदादि नारसिंह क्षेत्र के पार्श्व से कृष्णा नदी अमरावती की ओर निकली।

0: अशोक के बाद महादेव नाम के बुद्ध सन्यासी ने बुद्ध की धातु को उसमें रखा था।
1: उच्च स्थिति अमरावती महाचैत्या मोटमोदारी 1797
2: 2000 वर्ष पहले निर्मित इन स्तूपों की शिल्पकला उस समय के जीवन विधान की ओर जैसे आज भी संकेत करती हो। इतिहास बताता है कि यहाँ के शिल्पकारों ने अपनी कला को एक ओर कार्लो में तो दूसरी ओर अजंता और एलोरा में प्रसारित किया।
0: इसके अलावा उन्होंने सांची तथा ग्वालियर जाकर भी पत्थरों में रूप कल्पना को साकार किया और अपार शिल्प संपत्ति की सृष्टि की।
2: प्रमुख शिल्प समालोचक आनंद कुमार स्वामी के अनुसार अमरावती की शिल्पकला लालसा और उन्माद भरने वाली है और भारतीय शिल्प जगत में अत्यंत सुकुमार और सुंदर है। अमरावती के बगल में ही अमरेश्वर का मंदिर है, जहां से कृष्णा और कुछ दूर पूरब की ओर यात्रा करती हुई विजयवाड़ा पहुंचती है।

0: ये एक शैव क्षेत्र है। इंद्र की लाद्री पर स्थित कनक दुर्गा तथा मल्लेश्वर नित्य भक्तों की आरती से प्रसन्न होते हैं। सर आर्थर कॉटन के अनुसार जनरल कोर ने सन 1855 में यहीं 3714 फुट लंबे बांध का निर्माण किया। गोदावरी के पार्श्व में स्थित कोत्तगू डैम के कोयले से और कृष्णा नदी के पानी से विजयवाड़ा के थर्मल स्टेशन में बिजली का उत्पादन होता है। इसके बारे में कृष्णा केंद्रीय मंडल के अधिकारी श्री एम नरसिम्हा राव बताते हैं।
1: दक्षिण भारत देश नदलो कृष्णा नदी रेंडो पद्धति कृष्णा नदी विजयवाड़ा
2: कृष्णा नदी विजयवाड़ा के पास एक तिहाई मील खाली भाग में दो पहाड़ों के बीच बहती है। इससे यहाँ बांध बांधने में सुविधा हुई। सन 1952 में 100 साल पूरे हुए। इस बांध की नींव कमजोर हो गई, जिसके कारण इसमें दरारें पड़ गईं। उसके बाद सब तरह से सुविधाजनक रोड कम रेगुलेटर का निर्माण हुआ, जो नेशनल हाईवे नंबर 5 से मिलता है।
0: प्रकाशम बराज नामक इस बांध से अब 13,30,000 एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। कृष्णा नदी विजयवाड़ा से आगे बढ़कर कुचिलपुरी के पास से बहती है। यहीं पर सिद्धेंद्र योगी ने भामा कलाप की रचना की। तब से सिद्धेंद्र जी की सत्यभामा ने कुचिपुटी भागवतों से पूर्णता प्राप्त कर देश विदेश में ख्याति पाई। भरत की आराधना करने वाले कुचिपुड़ी लोगों ने अपने को कृष्णा तटवासी कहते हुए भामा के साथ जोड़ा।

मूव क्षत्रिया के पदों का अभिनय करने वाली नर्तकी मणिया श्रीकाकुलेंद्र महाविष्णु देवालय में देवदासियों की तरह रहा करती थी। ये देवालय प्राचीन समय में कृष्णा नदी के बीच द्वीप पर था और अब आसपास के क्षेत्र केले, ईक, आम, हल्दी, नारियल आदि के बागीचों के साथ साथ बाजरा, ज्वार, मक्का, दलहन आदि के खेतों से सदा हरे भरे रहते हैं, जैसे कृष्णा नदी का पानी सोने की फसलें देता हो।

किसान तथा खेत में काम करने वाले मजदूर माता कृष्णा की आराधना करते हैं। उस क्षेत्र में बहती कृष्णा का प्रवाह वेग कम होता जाता है, किंतु उसके पाट की चौड़ाई बढ़ती जाती है। सागर से आने वाले ज्वार से उसका स्पर्श होता रहता है और वो शनि शनि सागर की ओर बढ़ती रहती है।

महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र के लोगों की आराध्य देवी कृष्णा वेणी श्री संपदा की अगाध निधि का दान करती हुई और संस्कृति को संपन्न करती हुई अंततः सागर से जा मिलती है, जैसे अपने प्रियतम की गोद में जाकर अपने अस्तित्व का विलय कर रही हो।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: प्रसारित कर रहे हैं शिव महिमा। ये धारावाहिक भगवान शंकर से संबंधित है। चारों वेदों, सभी उपनिषदों और पुराणों में किए गए वर्णन का सार तत्व है और शिव पुराण पर आधारित है। प्रिय श्रोताओं, हम आपको उस स्थान पर ले चलते हैं जहां शिव पुराण का वाचन आरंभ होने वाला है। यहां मुनि श्रेष्ठ सूत जी और शौनक जी भगवान शिव की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
1: ओम नमः शिवाय।
2: मुनि शौनक, सारे संसार में पूजे जाने वाले सभी देवी देवताओं में अकेले भगवान शंकर ही ऐसे देवाधिदेव हैं जिनकी पूजा दोनों रूपों में की जाती है, साकार रूप में भी और निराकार रूप में भी।
3: महामुनि सूत जी, ये अत्यंत विलक्षण बात है, कृपा कर विस्तार से समझाइए।
2: शौनक, भगवान शिव का लिंग रूप निराकार है, वो संसार की उत्पत्ति का प्रतीक है, और भगवान शंकर का मूर्ति रूप साकार है। साकार रूप में भगवान शंकर कामदेव को भस्म करने वाले भी हैं।
3: सूत जी, ये कथा तो बड़ी रोचक जान पड़ती है। भगवान शिव के साकार रूप के संबंध में कुछ और बातें बताइए।
2: शौनक, भगवान शंकर का साकार रूप अत्यंत दिव्य और गंभीर तत्वों से भरा हुआ है। सृष्टि के आरंभ में सुरों और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकले अमृत को तो देवताओं ने ग्रहण कर लिया, किंतु सारे संसार की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण करने वाले भगवान शिव ही हैं।
3: हाँ, ये कथा तो सुनी हुई है।
2: इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के नख से प्रवाहित सुरसरी गंगा को अपनी जटाओं में बांधने वाले भगवान शंकर ही हैं, जिन्होंने राजा भगीरथ के पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को अपने शीश पर धारण किया। दूसरी ओर वो संसार से पूरी तरह विरक्त, भस्म रमाए, कमंडलधारी और वीतराग भी हैं। शीतलता के प्रतीक चंद्रमा को अपने शीश पर धारे हुए भी हैं और संसार के विनाश के लिए अपने ललाट पर तीसरे नेत्र को भी धारण किए हैं।
3: भगवन, इसका रहस्य क्या है?
2: शिव महिमा से संबंधित अनेक प्रसंग हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के अतिरिक्त अनेक उपनिषदों और पुराणों में भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं वायु पुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और लिंग पुराण। लेकिन शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत विवरण शिव पुराण में ही सबसे अधिक है।
3: महाज्ञानी सूची, मुझे पुराणों की कथा के सार तत्व को समझाइए।
2: वत्स, ये शिव पुराण जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, कानों के लिए अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार का उपदेश पाकर ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है।
3: महामुनि, इस कथा को सुनने से और उस पर आचरण करने से कौन कौन से पापों का नाश हो जाता है?
2: शौनक, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें देवराज नामक एक व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ।

0: देखा तुमने
1: जी,
0: ऊंचे कुल में पैदा होने में कितना बड़ा सुख है।
2: हाँ देवराज जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। संसार भर के छल कपट अनाचार करने का जैसे जन्मजात अधिकार ही मिल जाता हो।
0: ठीक कहा तुमने, उच्च कुल का व्यक्ति जानकर भोले भाले लोग अनायास ही मेरी धूर्तता का शिकार बन जाते हैं।
2: और बिना किसी श्रम के आप अटूट धन के स्वामी बन जाते हैं।
0: अरे अरे, वो देखो एक व्यापारी आ रहा है।
2: हाँ हाँ गुरुजी, देखने से तो काफी धनी जान पड़ता है।

0: कोई नई चाल चलता हूँ। तुम यहीं ठहरो और मेरी प्रतीक्षा करो।
1: जी अच्छा।
2: अरे मरा रे, हाय ईश्वर, मर गया रे।
1: क्या हुआ बंधु?
2: हाय पेट में भयंकर दर्द, असहनीय वेदना।
1: आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं?
2: किरा

0: लीजिए जल पीजिए।
1: जी अरे वाह ये कैसा चमत्कार।
0: क्या हुआ महाराज?
1: पानी पीते ही सारा दर्द गायब। मुझे लगता है मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। आपके हाथ में तो अद्भुत शक्ति है महाराज। क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूँ?
0: हाँ क्यों नहीं।
1: अरे वाह
2: आपकी हाथ की रेखाएं तो बहुत अच्छी हैं। यश है, कीर्ति है, लंबी आयु है, बहुत सुखी परिवार है आपका।
0: सच है महाराज, मेरी पत्नी और दोनों बेटियां बहुत ही धर्मपरायण हैं।
2: लेकिन आपको संतान का, आपका पुत्र
0: नहीं है महाराज।
1: लेकिन योग है
0: जी,
1: अवश्य है, निकट भविष्य में ही है।
0: अच्छा लेकिन ठहरिए महाराज।
2: ओहो ये राहु और शनि की वक्र दृष्टि, मंगल का कोप।
0: अच्छा एक बात बताइए
1: जी।
0: देखिए संकोच ना कीजिए।
1: नहीं
2: क्या पिछले दिनों आपने पीले सफेद रंग की कोई चमकदार चीज खरीदी?
0: पीले सफेद रंग की कोई चीज नहीं तो
2: याद कीजिए। कोई कपड़ा, कोई बर्तन अथवा कोई आभूषण?
0: अरे हाँ याद आया, पिछले साल मैंने अपनी पत्नी के लिए हीरे का हार खरीदा था।
2: बस बस बस बस वही है अनिष्ट की जड़। उस हार के घर में आने के बाद से ही आपके पुत्र प्राप्ति के योग अकारत होने लगे हैं महाराज। उसी हार के कारण आपकी आशा फलवती नहीं हो रही है।
0: अच्छा
2: हाँ?
0: तो महाराज उसका कोई उपाय?
2: उपाय उपाय तो है, यदि वो हार आप बिना किसी को बताए किसी अपरिचित बामन के हाथों से बहते जल में छुड़वा दें तो 6 माह के अंदर ही आपकी पत्नी गर्भ धारण कर सकती है।
0: अच्छा
2: हाँ लेकिन कठिनाई ये है कि इसकी जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए, आपकी पत्नी को भी नहीं।
0: ठीक है महाराज ऐसा ही होगा।
2: भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। अच्छा अब मुझे अनुमति दें, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की।
3: भाई भाई तनिक गाड़ी रोकना।
0: नहीं नहीं भाई घर ले चलो।
4: महाराज आप तो भविष्य दृष्टा हैं, ईश्वर की कृपा से आपके दर्शन हुए। महाराज अब आप ही मेरे लिए वो अनुष्ठान भी कर दे तो
2: मैं। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ओ वैसे मैं अपरिचित बामन तो हूँ, लेकिन ये काम किसी जानकार से ही करवाएं तो ठीक रहेगा। नहीं नहीं नहीं नहीं जानकार तो नहीं होना चाहिए,
4: बड़ी व्यवस्था है।
0: महाराज क्या आप मेरे लिए इतना इतना कष्ट सहन नहीं करेंगे? महाराज मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगा।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं एहसान की कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे ऊपर आपका बहुत उपकार है। यदि मैं आपके थोड़ा सा भी काम आ सकूं तो मेरा बोझ ही कम होगा ना। लेकिन एक बात कहते थोड़ा संकोच होता है।
0: महाराज संकोच छोड़ें और कहिए।
2: इस पूजा के लिए जो भी पूजन सामग्री दक्षिणा आदि होती है ना वो यजमान को ही करनी पड़ती है, वरना उसका सुफल प्राप्त नहीं होता।
0: अरे महाराज ये बात कहने में भला संकोच क्यों, ये तो अनुष्ठान का विधि विधान हुआ ना। अच्छा ये बताएं क्या इसके लिए 500 सोने की मोहरें काफी होंगी?
2: हाँ इतने में भी काम चल ही सकता है, लेकिन महाराज पूरे विधान के लिए अगर 1000 सोने की मोहरें होती तो बहुत अच्छा होता।
0: अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको उस हार के साथ 1000 सोने की मोहरें भी दे दूंगा। लीजिए महाराज अपना घर आ गया।
1: हाँ कितना बड़ा महल है।
2: अरे

0: तो धन्य है महाराज।
1: देखा बंधु कैसी युक्ति निकाली।
2: गुरुदेव ठगी विद्या में तो आपका जवाब ही नहीं है।
1: देखो कितनी आसानी से ये हार भी झटक लिया और पूरी 1000 सोने की मोहरे भी।
2: दोनों चीजें हड़प ली आपने।
1: हाँ।
2: लेकिन गुरुदेव हार और धन को लेकर हमें फौरन इस नगर को छोड़ देना चाहिए। क्यों?
1: कहते तो ठीक हो तुम भी, लगता है अब तुम भी ठगी विद्या के पारंगत होने लगे हो। चलो दूसरे नगर चलते हैं।
2: चलिए गुरुदेव।

0: लगता है ये कोई बहुत बड़ा शिवालय है।
1: जी गुरुदेव, देखिए ना कैसा अद्भुत मेला है यहाँ पर।
0: तुम जरा मेला देखो, मैं अभी आता हूँ।
1: जी
0: भाई, भाई जरा सुनिए।
2: कहिए महाराज,
0: ये कौन सा स्थान है और यहाँ क्या हो रहा है?
2: लगता है आप परदेसी हैं। महाराज, ये झूसी प्रयाग का प्रमुख शिव मंदिर है और मैं इस मंदिर का महंत हूँ।
0: अच्छा,
2: आज से ही यहाँ शिव पुराण का पारायण शुरू हो रहा है। देश भर के संत महात्मा यहाँ इसीलिए आए हुए हैं। आइए, आप भी दर्शन कीजिए, सत्संग का आनंद उठाइए।
0: हाँ अवश्य, आपका अनुमान सही है कि मैं परदेसी हूँ।
2: कोई बात नहीं, मैं यहाँ के व्यवस्थापक महोदय से कहकर आपके आवास और भोजन आदि की व्यवस्था करवा देता हूँ।

शिव महिमा को सुनकर कैसा रोमांच हो रहा है। जय शिव शंकर, जय महादेव। सारे संसार का कल्याण करने वाले शिव, क्या मुझ पापी का भी कल्याण संभव है? हे भोले शंकर, तुम्हारी जय हो। अरे ये कैसे जोत है, कितना तेज और कैसी शीतलता, कैसा आनंद है। हे शिव शंकर, तुम्हारी जय हो। मुझे अपनी शरण में लो भगवान। मैंने जीवन भर कुकर्म किए हैं, क्या मुझे क्षमा नहीं करोगे? मैंने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया भगवान। झूठ बोल कर भोले भाले लोगों को ठगता रहा, मुझे क्षमा करो महादेव, मुझे क्षमा करो। मैं सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ। हाँ भगवान, मैं प्रायश्चित करता हूँ। शंकर, मुझे

0: महाराज, आपकी तबीयत कैसी है?
1: मैं अच्छा हूं। शिव महिमा को सुनकर मेरे मन के सारे रोग दूर हो गए।
0: महाराज, ये फल लीजिए, भगवान शंकर का प्रसाद है।
1: नहीं भाई, भगवान शंकर का असली प्रसाद तो मैंने ले लिया है, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं।
0: महाराज, थोड़ा चरणामृत तो ग्रहण कीजिए।
1: मैंने अंचल छोड़ दिया है।
0: भला क्यों?

0: आइए आइए वैद्यराज, देखिए ये प्रवासी ब्राह्मण हैं, इनका शरीर बुरी तरह तप रहा है।
1: लगता है कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है,
0: लेकिन मुंह पर कैसी कांति है। बंधुवर आंखें खोलिए, मेरे साथ वैद्यराज आए हैं।
2: महंत जी, अब मुझे कोई रोग नहीं, मैं निरोग हूं।
1: अरे आपकी नाड़ी तो एकदम ठीक चल रही है, विचित्र बात है, इतने दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया तो भी किसी विकार के लक्षण नहीं दिखते। अच्छा बंधुवर, आपने अन्न जल क्यों त्याग दिया?
2: अपने सारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए। महंत जी,
0: कहिए बंधु।
2: मेरा प्रायश्चित भगवान शंकर को स्वीकार तो होगा ना? मुझे पश्चाताप है, घोर पश्चाताप।
0: निश्चय है बंधु, शिव पुराण महात्म्य के तीसरे अध्याय का पांचवा श्लोक स्पष्ट रूप से कहता है, पश्चाताप पापकृताम पापानाम निष्कृति परा सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम्। अर्थात पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है।
2: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।
1: महन जी, यह आत्मा तो भगवान शिव को प्यारी हुई, इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कीजिए।

0: चलो इस महापापी आत्मा को यमपुरी में ले चलो।
1: ठहरो, ये पापात्मा नहीं पुण्यात्मा है। इसका स्थान यमपुरी नहीं शिवलोक है, इसे बंधन मुक्त करो।
0: किंतु देखिए, इसने तो जीवन भर अनेक पाप कर्म किए हैं, ये रहा इसका लेखा जोखा।
1: जीवन के अंतकाल में इसने शिव पुराण सुनकर अपने समस्त पापों का प्रायश्चित भी तो किया है, उसका लेखा जोखा नहीं किया तुमने? जय शिव शंकर, जय महादेव, जय जय भोले। ठहरो, ये क्या हो रहा है? मेरे दूतों के काम में विघ्न डालने वाले तुम कौन हो? हम भगवान शिव के गण हैं महाराज, इस पुण्य आत्मा को शिवधाम ले जा रहे हैं।
2: शिवधाम? ठहरो, मुझे ज्ञान दृष्टि से मालूम करने दो। हे नीलकंठ, हे त्रिनेत्र, हे

0: अरे इस साधना को तो भगवान शिव ने अपने श्री चरणों में स्थान दिया है। हो शिव पुराण के सुनने के प्रभाव से युक्त इसके प्रायश्चित ने इसके सारे पाप नष्ट कर दिए। यमदूतो,
1: भगवान
0: तुमने शिव पुराण के महत्व को अनदेखा कर दिया। जाओ, भविष्य में यह भूल दोबारा न होने पाए।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: जाओ।
2: हे मुनि श्रेष्ठ सूत जी, आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस अद्भुत कथा को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है।
3: हे शानक, सुनो, तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं तुम्हें शिव पुराण की महिमा के संबंध में एक कथा और सुनाऊंगा।
2: हे महामुनि, आपका यह कथन अत्यंत मनोरम और संसार के समस्त प्राणियों के लिए पापनाशक और दुख निवारक है। जन कल्याण के लिए इसे अवश्य सुनाइए।
4: शिव महिमा। अभी आप शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित ये कार्यक्रम सुन रहे थे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
1: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
2: कोई बोले राम राम।
1: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं। और उधर रावण के दरबार में राग रंग उत्साह, जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूपनखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

यशस्विनी। सिंहना ऊपर विराजेला जमना बे हाथे कमल धारण करे आशे ने कमल थी अलंकृत यशस्विनी। कार्तिके स्कंद, स्कंद नो अर्थ से कार्तिके, हा पार्वतीजी ना सुपुत्र गणेश ने कार्तिके, ने कार्तिके नु नाम स्कंद पण छे। ये स्कंद कार्तिकेय ना माता पार्वती अमारू मंगल करो, शुभ पदार्थ आपो, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। भगवती पार्वती नु एक नाम स्कंद माता छे। पार्वती ना बे पुत्रो स्कंद अने गणेश। तारकासुर नामना दैत्यनो वध करनार कुमार कार्तिकेयनी उत्पत्ति संभव। एक कथानक वालू एक दिव्य भव्य कुमार संभव महाकाव्य बहु जाणीतू छे महाकवि कालिदासनु। तो छांदोग्य श्रुति अनुसार भगवती शक्ति थी उत्पन्न थयेल सनत कुमार नु नाम पण स्कंद छे। संस्कृत साहित्य में एक विनोदजनक सुभाषित स्कंद ना कार्तिकेय ना संदर्भ में मळी आवे छे। શ્લોક સાંભળીએ।

नमस्ते जगत तारिणी त्राही दुर्गे। हे शरण आपवामां कुशल कल्याणमयी दयामयी जगद्व्यापिके विश्वयमनु स्वरूप छे एवं जगदवंद्य चरणारविंद थी सुशोभित हे माँ दुर्गा अमारू आपत्तियों माथी रक्षण करो रक्षण करो।

सिंह ऊपर विराजिला, मस्तक ऊपर चंद्र धारण करनार, लीलम मरकट लीलम मणि जेवा शोभता, शंख चक्र धनुष्य अने बाणने पोतानी चार भुजाओथी धारण करता, त्रण नेत्रोथी सुशोभित मधुर शब्द करती घुघरियो वाला कंदोरा थी, अने रणकार करता झांझर थी शोभता, रत्न थी उज्ज्वल कुंडल वाला श्री दुर्गा माता, अमारा दारिद्र्य अने दुःखनो नाश करो।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

ओ सज्जन दे गल लगियां लगियां पैगी राती अंधेरी, सज्जन दे गल लगियां लगियां पैगी राती अंधेरी, ओ जान भी दे हुण सोहणिया।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दें। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

¡Arriba!

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दें। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।